0: चलाई मत करो
1: आई
0: बना
1: आई एस्पेक्ट सा सिलेंगो के जाने का इंडिगो दिमाग दूँगा ही सिलेंगो के ने